0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदवे के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो चौदवे का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसे 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा, कलिसिया दुनिया में संपूर्ण मानव परिवार के लिए एकता की एक निशानी स्वरूप उपस्थित है। वह आज के सवालों और चुनौतियों को समझती है, जहां वह अपनी विशेषकर बुलाहट सुनना, वार्ता और सेवा करने को अग्रसर होती है, और वर्तमान समय के नर नारियों के जीवन और हर बात की चिंता करते हुए उसका प्रत्युत्तर देती है। लोगों के जीवन में कलिसिया की यह सहभागिता उसे और गहराई से अपनी प्रेरिताई को समझने में मदद करती है कि उसका एक ऐतिहासिक दायरा है और उसमें सामाजिक संबंध बनाने के तरीके की जिम्मेदारी शामिल है। इसी कारण से समाज निर्माण की शक्तियों के संबंध में वह एक अपरिचिता के रूप में नहीं देखी जा सकती है। इसके विपरीत कलिसिया सक्रिय रूप से उन प्रक्रिया में सहभागी होती है, जिनके द्वारा समाज का निर्माण और विकास होता है, और वह अपनी ओर से एक बेहतर और भ्रातृत्वमय समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। संत पापा फ्रांसिस इस संदर्भ में कलिसिया की प्रेरिताई के ऐतिहासिक आयाम पर जोर देते हैं। कोई भी यह मांग नहीं कर सकता कि धर्म को निजी जीवन के अंदरूनी हिस्से तक सीमित कर दिया जाए, उसका सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन पर कोई प्रभाव ना हो, उसे नागरिक संस्थानों की मजबूती की कोई चिंता ना हो, समाज को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर उसका राय देने का अधिकार ना हो। श्रोताओं, इतिहास के विशेष समय में मानवता के संग चलने हेतु कलिसिया का बुलावा और उत्तरदायित्व उसे इस बात को पहचानने में मदद करती है कि पृथ्वी की सच्चाइयां स्वयं अपने में एक चरित्र और क्रम को वहन करती हैं। द्वितीय वैटिकन महासभा ने इस सिद्धांत को एक विशेष सुनिश्चितता में व्यक्त करते हुए विश्व प्रेरितिक पत्र गौडियम एट स्पेस, जिसकी 60वीं सालगिरह की याद करते हुए 7 दिसंबर 2025 को समारोह मनाया गया, हमें कहता है, अगर दुनियावी मामलों की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि बनाई गई चीजें और समाज खुद अपने नियम और मूल्यों का आनंद उठाते हैं, तो आज़ादी की मांग पूरी तरह से सही है। इस बात की सुदृढ़ता हमें यह दिखलाती है कि सृष्टि अपने में एक वास्तविक सुंदरता को वहन करती है, जिसे हमें मानवीय दृष्टि में सुरक्षित रखने, सृजित करने और उसे पूर्णतः तक ले जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कलिसिया हमें अपने को देती है, जो हमें सच्चाई को और अधिक गहराई से परिभाषित करने हेतु मदद करती है। वह उन चुनौतियों को अपनी कोमलता में सुदृढ़ता प्रदान करती है, जो हर मानवीय सम्मान, समुदायों की एकता और सबों की भलाई को बढ़ावा देती है। कलिसिया इस भांति विश्व के संग खड़ी होती है, उसके ऊपर अपने को थोपे बिना, जिससे न्याय और शांति की प्रतिज्ञा, जिसे पवित्र आत्मा सदैव मानव के हृदय में पोषित करते हैं, जो मानव की हर एक कोशिश में फलहित हो। श्रोताओं, इस बात को स्वीकारते हुए कि विकसित होते इतिहास में ईश्वर नर और नारियों की स्वतंत्रता को कायम रखते हैं, द्वितीय वैटिकन महासभा कलिसियाई समुदाय और राजनीतिक समुदाय के बीच स्पष्ट अंतर को सुदृढ़ करती है। इस बात पर जोर देते हुए कि हर एक अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में कार्य करे, विश्व में कलिसिया की उपस्थिति को हम नागर समाज और लोक संस्थानों के बीच आपसी संबंध में भी व्यक्त होता पाते हैं। अपने को इन संस्थानों से संयुक्त करते हुए कलिसिया सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों को महत्व देती और उनके विशेष उत्तरदायित्वों का सम्मान करती है। वह उन सारी बातों को प्रोत्साहित करती है जो व्यक्तिगत रूप में लोगों के हित और समाज के ताने बाने को मजबूत बनाए रखते हैं। कलिसिया राज्य से संबंधित बातों को संचालित करने का दावा नहीं करती है, इसके विपरीत यह उन लोगों का सम्मान करती है जो जनहित में कार्य करते हैं और नागर संस्थानों के उत्तरदायित्वों को समाज के अंदर सुदृढ़ता में स्वीकार करते हैं। वहीं कलिसिया की प्रेरिताई उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वह सचमुच दुख से पीड़ित नर और नारियों के प्रति अपनी आवाज उठाए। यह नजदीकी सिविल संस्थानों की जगह लेने के इरादे से नहीं आती और ना ही उनके काम की छिपी हुई आलोचना से, बल्कि इसकी उत्पत्ति सुसमाचार की करुणा से होती है, जो कलिसिया को घायल मानवता के लिए अपने को प्रेरित करती है। जब कभी भी वे अपने को बृहद दुख का शिकार पाते हैं, जब कलिसिया इन बातों पर हस्तक्षेप करती है, तो वह ऐसा भले सामारी के उदाहरण का अनुसरण करते हुए करती है, जो समझदारी और निकटता में होती है, उस सचेतना में कि जो चीज अति जरूरत से पैदा होती है वह नियम नहीं बन सकती, ना ही संस्थागत उत्तरदायित्वों को नागर समुदाय की जिम्मेदारियों में बदला जा सकता है। श्रोताओं, इन दो आयामी स्वीकृति दुनिया के वास्तविकताओं की स्वायत्तता और कलिसिया तथा राजनीति क्षमता के बीच अंतर से शुरू हमारे लिए इस बात की स्पष्टता लाती है जो द्वितीय वैटिकन महासभा के द्वारा कलिसिया के लिए विश्व के संबंध में स्थापित किया गया है। गाउडियम एट स्पेस हमें इस बात की याद दिलाती है कि यह सारी ईश प्रजा का कार्य है, विशेषकर पुरोहितों और ईश शास्त्रियों का, कि वे सुने और वर्तमान समय की बहुत सारी आवाजों के बीच अंतर स्थापित करते हुए उन्हें ईश वचन के प्रकाश में परिभाषित करें, जिससे प्रकट की गई सच्चाई गहराई में प्रवेश करे, उसे बेहतर रूप में समझा और उसे उचित रूप में प्रकट किया जा सके। बहुत सारी आवाजों को सुनना अपने में केवल एक सामाजिक क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक आत्म परख की मांग करती है। पवित्र आत्मा से निर्देशित ईश प्रजा संस्कृति और सामाजिक परिवर्तनों में इस बात को पहचानती है कि वे दोनों ख्रीस्त की उपस्थिति की निशानियां हैं, जो हमारे बीच आती और इतिहास को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। इस भांति प्रकट किया गया सत्य का मूल सार अपने में नहीं बदलता है, लेकिन यह अपने में स्पष्ट होता और ठोस चीजों के चुनाव में एक मापदंड बनता है। व्यक्तिगत और सामुदायिक परिवर्तन हेतु एक मार्ग जो संरचनाओं के सुधार को बढ़ावा देता और सामाजिक जीवन में सुसमाचार का साक्ष्य नए तरीकों से प्रस्तुत करने में मदद करता है। इतिहास इस भांति एक उस स्थल के रूप में समझी जाती है जहां कलिसिया अपने को पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार में व्याप्त मानवीय शक्ति से शिक्षित होने देती है और वह हर व्यक्ति की गरिमा और सभी लोगों की भलाई के लिए खुद अपने शिक्षण का विकास करना सीखती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापालियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने किगाली में आयोजित सिग्नेस विश्व सम्मेलन को एकता संदेश भेजा और प्रतिभागियों से उम्मीद जताई कि उनकी बातचीत इस बात को सुनिश्चित करने में मददगार होगी कि संचार मानव परिवार की भलाई के लिए काम करें। कार्डिनल परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एकता संदेश में पोप लियो 14वें ने अफ्रीका के किगाली में पहली बार हो रहे सिग्नेस विश्व सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित किया। पोप ने कार्तिक मीडिया पेशेवरों से एक ऐसी संस्कृति में योगदान देने की अपील की जो मेल जोल, शांति और पर्यावरण सुरक्षा के मूल्यों को दर्शाता हो। अफ्रीकी देश में सिग्नेस विश्व सम्मेलन 3 से 8 अगस्त तक आयोजित है, जिसके प्रतिभागियों से पोप ने कहा, हमारे युग को अक्सर डिजिटल युग कहा जाता है क्योंकि हमारा अधिकांश जीवन डिजिटल तकनीक और इंटरनेट से संचालित होता है। वास्तव में अपने विश्व पत्र मानिफिका ओमानितास में पोप ने पुष्टि की है कि ऑनलाइन संचार केवल सूचना का प्रसारण नहीं बल्कि एक संस्कृति का निर्माण है, क्योंकि इसमें लोगों के दुनिया को देखने के तरीके को आकार देने की शक्ति है और इस तरह सामूहिक विवेक पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में पोप को भरोसा है कि सांस्कृतिक सद्भाव और पर्यावरण कल्याण के लिए डिजिटल संचार विषय पर सिग्नेस प्रतिभागियों के विचार उन संचार रणनीतियों और उपकरणों को बढ़ावा देने के तरीकों की तलाश करेंगे जो सत्य की खोज और मानवीय गरिमा के सम्मान से प्रेरित हैं। इस तरह उनका कार्य एक ऐसी संस्कृति को जन्म देगा जो साम्य, शांति और पर्यावरण प्रबंधन के सुसमाचारी मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगा। संत पापा ने सभी प्रतिभागियों को कलीसिया की माता मरियम की मध्यस्थता को सुपुर्द करते हुए भरोसा दिलाया है कि उनकी कोशिशें हमेशा फल लाएंगी। अंत में संत पापा ने सभी पर प्रभु की प्रज्ञा एवं सामर्थ्य की कामना करते हुए अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया है। पोप लियो के संदेश पढ़ने के तुरंत बाद वैटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पाउलो रूफिनी का एक वीडियो संदेश पौत्र परिवार होटल के हॉल में दिखाया गया जहां यह कार्यक्रम हो रहा है। प्रीफेक्ट ने सिग्नेस विश्व सम्मेलन के लिए शुक्रिया अदा किया जो हमें ऐसी चीजों की याद दिलाती है जिससे हमारा डिजिटल जगत अक्सर भूल जाता है कि संचार तकनीकी से शुरू नहीं होता बल्कि लोगों से होता है। प्रीफेक्ट ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान परिस्थिति में इस मुश्किल दौर में जिसको अक्सर युद्ध, ध्रुवीकरण, फेक न्यूज और बढ़ते अविश्वास से पहचाना जाता है, यह एक ऐसा समय भी है जब पहली बार हमारे पास एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रभावशाली उपकरण है। डॉक्टर रूफिनी ने कहा, फिर भी एक सरल डिजिटल संपर्क सहभागिता पर आधारित रिश्ते जैसा नहीं है। हम इसके लेखक हैं और हमें लेखक ही रहना चाहिए, जैसा कि पोप फ्रांसिस और फिर पोप लियो ने भी कहा है। हमें मानव की सुरक्षा करने, मानव की आवाजों और चेहरों को बचा कर रखने के लिए बुलाया गया है। इसका मतलब उन्हें किसी संग्रहालय में रखना नहीं है बल्कि उनकी सक्रिय देखभाल करना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, बातचीत के लिए जगह बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी हमेशा इंसान की सेवा में बनी रहे। प्रीफेक्ट ने कहा, यह एक मुश्किल काम है और इसे पूरा करने के लिए संचार के अच्छे तरीकों और भरोसेमंद जानकारी को बढ़ाने एवं समर्थन देने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क की जरूरत है। कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा का 3 अगस्त 2026 को मपुटो के अस्पताल में निधन हो गया। वे शाई शाई के सेवानिवृत्त मध्यक्ष और मोजाम्बिक की कार्तिक कलीसिया के इतिहास में दूसरे कार्डिनल थे। वे 98 साल के थे। वे कलीसिया की सेवा का एक लंबा इतिहास छोड़ गए जिसमें शाय शैधम प्रांत में 28 सालों तक सेवा दी। वैटिकन रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में मबूटो के सेवानिवृत्त महाधर्मदर्श एवं शाय शाय के प्रेरितिक प्रशासक डॉम फ्रांचेस्को चिमोयो ने कार्डिनल की विरासत के बारे बात की। कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। डॉम फ्रांचेस्को चिमोयो के अनुसार कार्डिनल की दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद इलाज के लिए समय नहीं मिला। शाय शाय के प्रेरितिक प्रशासक ने निधन की पुष्टि करते हुए कहा, इलाज के लिए समय नहीं मिला इसलिए वे चले गए, पिता के पास जाने के लिए चले गए।
कार्डिनल के निधन के बाद महाधव मदर्श फ्रांचेस्को ने कलीसिया से विश्वास एवं आशा में मजबूत रहने की अपील की है। उन्होंने 28 साल तक शायदम प्रांत में उनकी सेवा को याद किया। मापुटो के सेवानिवृत्त महाधव मदर्श का मानना है कि कार्डिनल जूलियो लांगा के विश्वास, आशा एवं उदारता के माध्यम से उनके कामों को जारी रखना है, ताकि प्रेम, ईमानदारी, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति खुलेपन वाला समाज बने। महाधव मदर्श फ्रांचेस्को के लिए कार्डिनल की विरासत उन सभी ईसाइयों के लिए हिम्मत का काम करेगी जो अपने विश्वास की यात्रा पर हैं। कार्डिनल जूलियो का अंतिम संस्कार 6 अगस्त को मापुटो के महागिरजा घर में सुबह 9 बजे क्रिस्त्याग के साथ होगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शाय ले जाया जाएगा, जहां दोपहर में एक पौत्र मिस्सा होगा। 7 अगस्त को अलग अलग दलों की प्रार्थनाएं होंगी। उसके अंत में पुनः क्रिस्त्याग होगा। 8 अगस्त को पार्थिव शरीर को शोगोइने में लूत की माता मरियम तीर्थस्थल लिया जाएगा, जहाँ सुबह 9 बजे क्रिस्त्याग होगा और उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा। 14 फरवरी 2015 को पोप फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनल बनाया था। कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा मोजाम्बिक में कार्तिक कलीसिया के एक जाने माने व्यक्ति थे। 27 अक्टूबर 1927 को गजा प्रांत में जन्मे कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा का पुरोहिताभिषेक 1957 में हुआ था। लगभग 3 दशकों तक धर्मदर्श के रूप में सेवा देने के बाद वे 2004 में सेवानिवृत्त हो गए थे। 2027 में सियोल में होने वाले विश्व युवा दिवस के एक साल पहले इसका आधिकारिक गीत जारी किया गया। यह एक ऐसी धुन है जो युवा कैथोलिकों की पूरी पीढ़ी के मन में गूंजेगी। अगले विश्व युवा दिवस के आधिकारिक गीत को कार्यक्रम के ठीक एक साल पहले जारी किया गया। यह गीत कैथोलिक युवाओं के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिलन समारोह के लिए माहौल तैयार करेगा, जो 3 से 8 अगस्त 2027 को सियोल में होगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापालियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापालियो चौदहवें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसे 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा, कलिसिया दुनिया में संपूर्ण मानव परिवार के लिए एकता की एक निशानी स्वरूप उपस्थित है। वह आज के सवालों और चुनौतियों को समझती है, जहां वह अपने विशेषकर बुलाहट सुनना वार्ता और सेवा करने को अग्रसर होती है, और वर्तमान समय के नर नारियों के जीवन और हर बात की चिंता करते हुए उसका प्रत्युत्तर देती है। लोगों के जीवन में कलिसिया की यह सहभागिता उसे और गहराई से अपनी प्रेरिताई को समझने में मदद करती है कि उसका एक ऐतिहासिक दायरा है और उसमें सामाजिक संबंध बनाने के तरीके की जिम्मेदारी शामिल है। इसी कारण से समाज निर्माण की शक्तियों के संबंध में वह एक अपरिचिता के रूप में नहीं देखी जा सकती है। इसके विपरीत कलिसिया सक्रिय रूप से उन प्रक्रिया में सहभागी होती है, जिनके द्वारा समाज का निर्माण और विकास होता है, और वह अपनी ओर से एक बेहतर और भ्रातृत्वमय समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। संत पापा फ्रांसिस इस संदर्भ में कलिसिया की प्रेरिताई के ऐतिहासिक आयाम पर जोर देते हैं। कोई भी यह मांग नहीं कर सकता कि धर्म को निजी जीवन के अंदरूनी हिस्से तक सीमित कर दिया जाए, उसका सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन पर कोई प्रभाव ना हो, उसे नागरिक संस्थानों की मजबूती की कोई चिंता ना हो, समाज को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर उसका राय देने का अधिकार ना हो। श्रोताओं, इतिहास के विशेष समय में मानवता के संग चलने हेतु कलिसिया का बुलावा और उत्तरदायित्व उसे इस बात को पहचानने में मदद करती है कि पृथ्वी की सच्चाइयां स्वयं अपने में एक चरित्र और क्रम को वहन करती हैं। द्वितीय वैटिकन महासभा ने इस सिद्धांत को एक विशेष सुनिश्चितता में व्यक्त करते हुए विश्व प्रेरितिक पत्र गाउडियम एट स्पेस, जिसकी 60वीं सालगिरह की याद करते हुए 7 दिसंबर 2025 को समारोह मनाया गया, हमें कहता है, अगर दुनियावी मामलों की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि बनाई गई चीजें और समाज खुद अपने नियम और मूल्यों का आनंद उठाते हैं, तो आजादी की मांग पूरी तरह से सही है। इस बात की सुदृढ़ता हमें यह दिखलाती है कि सृष्टि अपने में एक वास्तविक सुंदरता को वहन करती है, जिसे हमें मानवीय दृष्टि में सुरक्षित रखने, सृजित करने और उसे पूर्णता तक ले जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कलिसिया हमें अपने को देती है, जो हमें सच्चाई को और अधिक गहराई से परिभाषित करने हेतु मदद करती है। वह उन चुनौतियों को अपनी कोमलता में सुदृढ़ता प्रदान करती है, जो हर मानवीय सम्मान, समुदायों की एकता और सभों की भलाई को बढ़ावा देती है। कलिसिया इस भांति विश्व के संग खड़ी होती है, उसके ऊपर अपने को थोपे बिना, जिससे न्याय और शांति की प्रतिज्ञा, जिसे पवित्र आत्मा सदैव मानव के हृदय में पोषित करते हैं, जो मानव की हर एक कोशिश में फलहित हो। श्रोताओं, इस बात को स्वीकारते हुए कि विकसित होते इतिहास में ईश्वर नर और नारियों की स्वतंत्रता को कायम रखते हैं, द्वितीय वैटिकन महासभा कलिसियाई समुदाय और राजनीतिक समुदाय के बीच स्पष्ट अंतर को सुदृढ़ करती है। इस बात पर जोर देते हुए कि हर एक अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में कार्य करे, विश्व में कलिस्य की उपस्थिति को हम नागर समाज और लोक संस्थानों के बीच आपसी संबंध में भी व्यक्त होता पाते हैं। अपने को इन संस्थानों से संयुक्त करते हुए कलिस्य सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों को महत्व देती और उनके विशेष उत्तरदायित्वों का सम्मान करती है। वह उन सारी बातों को प्रोत्साहित करती है जो व्यक्तिगत रूप में लोगों के हित और समाज के ताने बाने को मजबूत बनाए रखते हैं। कलिसिया राज्य से संबंधित बातों को संचालित करने का दावा नहीं करती है, इसके विपरीत यह उन लोगों का सम्मान करती है जो जनहित में कार्य करते हैं और नागर संस्थानों के उत्तरदायित्वों को समाज के अंदर सुदृढ़ता में स्वीकार करते हैं। वहीं कलिसिया की प्रेरिताई उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वह सचमुच दुख से पीड़ित नर और नारियों के प्रति अपनी आवाज उठाए। यह नजदीकी सिविल संस्थानों की जगह लेने के इरादे से नहीं आती और ना ही उनके काम की छिपी हुई आलोचना से, बल्कि इसकी उत्पत्ति सुसमाचार की करुणा से होती है, जो कलिसे को घायल मानवता के लिए अपने को प्रेरित करती है। जब कभी भी वे अपने को बृहद दुख का शिकार पाते हैं, जब कलिसिया इन बातों पर हस्तक्षेप करती है, तो वह ऐसा भले सामारी के उदाहरण का अनुसरण करते हुए करती है, जो समझदारी और निकटता में होती है, उस सचेतना में कि जो चीज अति जरूरत से पैदा होती है वह नियम नहीं बन सकती, ना ही संस्थागत उत्तरदायित्वों को नागर समुदाय की जिम्मेदारियों में बदला जा सकता है। श्रोताओं, इन दो आयामी स्वीकृति दुनिया के वास्तविकताओं की स्वायत्तता और कलिसिया तथा राजनीति क्षमता के बीच अंतर से शुरू हमारे लिए इस बात की स्पष्टता लाती है जो द्वितीय वैटिकन महासभा के द्वारा कलिसिया के लिए विश्व के संबंध में स्थापित किया गया है। गाउडियम एट स्पेस हमें इस बात की याद दिलाती है कि यह सारी ईश प्रजा का कार्य है, विशेषकर पुरोहितों और ईश शास्त्रियों का, कि वे सुने और वर्तमान समय की बहुत सारी आवाजों के बीच अंतर स्थापित करते हुए उन्हें ईश वचन के प्रकाश में परिभाषित करें, जिससे प्रकट की गई सच्चाई गहराई में प्रवेश करे, उसे बेहतर रूप में समझा और उसे उचित रूप में प्रकट किया जा सके। बहुत सारी आवाजों को सुनना अपने में केवल एक सामाजिक क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक आत्म परख की मांग करती है। पवित्र आत्मा से निर्देशित ईश प्रजा संस्कृति और सामाजिक परिवर्तनों में इस बात को पहचानती है कि वे दोनों ख्रीस्त की उपस्थिति की निशानियां हैं, जो हमारे बीच आती और इतिहास को पूर्णता की ओर ले चलते हैं। इस भांति प्रकट किया गया सत्य का मूल सार अपने में नहीं बदलता है, लेकिन यह अपने में स्पष्ट होता और ठोस चीजों के चुनाव में एक मापदंड बनता है। व्यक्तिगत और सामुदायिक परिवर्तन हेतु एक मार्ग जो संरचनाओं के सुधार को बढ़ावा देता और सामाजिक जीवन में सुसमाचार का साक्ष्य नए तरीकों से प्रस्तुत करने में मदद करता है। इतिहास इस भांति एक उस स्थल के रूप में समझी जाती है जहां कलिसिया अपने को पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार में व्याप्त मानवीय शक्ति से शिक्षित होने देती है और वह हर व्यक्ति की गरिमा और सभी लोगों की भलाई के लिए खुद अपने शिक्षण का विकास करना सीखती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापालियो 14वें के प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने किगाली में आयोजित सिग्नेस विश्व सम्मेलन को एकता संदेश भेजा और प्रतिभागियों से उम्मीद जताई कि उनकी बातचीत इस बात को सुनिश्चित करने में मददगार होगी कि संचार मानव परिवार की भलाई के लिए काम करें। कार्डिनल परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एकता संदेश में पोप लियो 14वें ने अफ्रीका के किगाली में पहली बार हो रहे सिग्नेस विश्व सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित किया। पोप ने कार्तिक मीडिया पेशेवरों से एक ऐसी संस्कृति में योगदान देने की अपील की जो मेल जोल शांति और पर्यावरण सुरक्षा के मूल्यों को दर्शाता हो। अफ्रीकी देश में सिग्नेस विश्व सम्मेलन 3 से 8 अगस्त तक आयोजित है, जिसके प्रतिभागियों से पोप ने कहा, हमारे युग को अक्सर डिजिटल युग कहा जाता है क्योंकि हमारा अधिकांश जीवन डिजिटल तकनीक और इंटरनेट से संचालित होता है। वास्तव में अपने विश्व पत्र मैनिफिका उमानितास में पोप ने पुष्टि की है कि ऑनलाइन संचार केवल सूचना का प्रसारण नहीं बल्कि एक संस्कृति का निर्माण है, क्योंकि इसमें लोगों के दुनिया को देखने के तरीके को आकार देने की शक्ति है और इस तरह सामूहिक विवेक पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में पोप को भरोसा है कि सांस्कृतिक सद्भाव और पर्यावरण कल्याण के लिए डिजिटल संचार विषय पर सिग्नेस प्रतिभागियों के विचार उन संचार रणनीतियों और उपकरणों को बढ़ावा देने के तरीकों की तलाश करेंगे जो सत्य की खोज और मानवीय गरिमा के सम्मान से प्रेरित हैं। इस तरह उनका कार्य एक ऐसी संस्कृति को जन्म देगा जो साम्य शांति और पर्यावरण प्रबंधन के सुसमाचारी मूल्यों को प्रतिबिंबित करेगा। संत पापा ने सभी प्रतिभागियों को कलीसिया की माता मरियम की मध्यस्थता को सुपुर्द करते हुए भरोसा दिलाया है कि उनकी कोशिशें हमेशा फल लाएंगी। अंत में संत पापा ने सभी पर प्रभु की प्रज्ञा एवं सामर्थ्य की कामना करते हुए अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया है। पोप लियो के संदेश पढ़ने के तुरंत बाद वैटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पाउलो रूफिनी का एक वीडियो संदेश पौत्र परिवार होटल के हॉल में दिखाया गया जहां यह कार्यक्रम हो रहा है। प्रीफेक्ट ने सिग्नेस विश्व सम्मेलन के लिए शुक्रिया अदा किया जो हमें ऐसी चीजों की याद दिलाती है जिससे हमारा डिजिटल जगत अक्सर भूल जाता है कि संचार तकनीकी से शुरू नहीं होता बल्कि लोगों से होता है। प्रीफेक्ट ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान परिस्थिति में इस मुश्किल दौर में जिसको अक्सर युद्ध ध्रुवीकरण फेक न्यूज और बढ़ते अविश्वास से पहचाना जाता है, यह एक ऐसा समय भी है जब पहली बार हमारे पास एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रभावशाली उपकरण है। डॉक्टर रूफिनी ने कहा, फिर भी एक सरल डिजिटल संपर्क सहभागिता पर आधारित रिश्ते जैसा नहीं है। हम इसके लेखक हैं और हमें लेखक ही रहना चाहिए, जैसा कि पोप फ्रांसिस और फिर पोप लियो ने भी कहा है। हमें मानव की सुरक्षा करने, मानव की आवाजों और चेहरों को बचाकर रखने के लिए बुलाया गया है। इसका मतलब उन्हें किसी संग्रहालय में रखना नहीं है बल्कि उनकी सक्रिय देखभाल करना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, बातचीत के लिए जगह बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी हमेशा इंसान की सेवा में बनी रहे। प्रीफेक्ट ने कहा, यह एक मुश्किल काम है और इसे पूरा करने के लिए संचार के अच्छे तरीकों और भरोसेमंद जानकारी को बढ़ाने एवं समर्थन देने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क की जरूरत है। कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा का 3 अगस्त 2026 को मापुटो के अस्पताल में निधन हो गया। वे शाई शाई के सेवानिवृत्त मध्यक्ष और मोजाम्बिक की कार्तिक कलीसिया के इतिहास में दूसरे कार्डिनल थे। वे 98 साल के थे। वे कलीसिया की सेवा का एक लंबा इतिहास छोड़ गए जिसमें शाई शाई धर्म प्रांत में 28 सालों तक सेवा दी। वैटिकन रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में मबूटो के सेवानिवृत्त महाधर्म अध्यक्ष एवं शाई शाई के प्रेरितिक प्रशासक डॉम फ्रांचेस्को चिमोयो ने कार्डिनल की विरासत के बारे बात की। कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। डॉम फ्रांचेस्को चिमोयो के अनुसार कार्डिनल की दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद इलाज के लिए समय नहीं मिला। शाई शाई के प्रेरितिक प्रशासक ने निधन की पुष्टि करते हुए कहा, इलाज के लिए समय नहीं मिला इसलिए वे चले गए, पिता के पास जाने के लिए चले गए। कार्डिनल के निधन के बाद महाधर्म अध्यक्ष फ्रांचेस्को ने कलीसिया से विश्वास एवं आशा में मजबूत रहने की अपील की है।
उन्होंने 28 साल तक शायद धम प्रांत में उनकी सेवा को याद किया। मापुटो के सेवानिवृत्त महाधर्म अध्यक्ष का मानना है कि कार्डिनल जूलियो लांगा के विश्वास, आशा एवं उदारता के माध्यम से उनके कामों को जारी रखना है, ताकि प्रेम, ईमानदारी, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति खुलेपन वाला समाज बने। महाधर्म अध्यक्ष फ्रांसिस्को के लिए कार्डिनल की विरासत उन सभी ईसाइयों के लिए हिम्मत का काम करेगी जो अपने विश्वास की यात्रा पर हैं। कार्डिनल जूलियो का अंतिम संस्कार 6 अगस्त को मपूटो के महागिरजाघर में सुबह 9 बजे क्रिस्त्याग के साथ होगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शाय ले जाया जाएगा, जहां दोपहर में एक पौत्र मिस्सा होगा। 7 अगस्त को अलग अलग दलों की प्रार्थनाएं होंगी। उसके अंत में पुनः क्रिस्त्याग होगा। 8 अगस्त को पार्थिव शरीर को शोगोइने में लूथ की माता मरियम तीर्थस्थल लिया जाएगा, जहाँ सुबह 9 बजे क्रिस्त्याग होगा और उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा। 14 फरवरी 2015 को पोप फ्रांसिस ने उन्हें कार्डिनल बनाया था। कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा मोजाम्बिक में कार्तिक कलीसिया के एक जाने माने व्यक्ति थे। 27 अक्टूबर 1927 को गजा प्रांत में जन्मे कार्डिनल डॉम जूलियो लांगा का पुरोहिताभिषेक 1957 में हुआ था। लगभग 3 दशकों तक धर्माध्यक्ष के रूप में सेवा देने के बाद वे 2004 में सेवानिवृत्त हो गए थे। 2027 में सियोल में होने वाले विश्व युवा दिवस के एक साल पहले इसका आधिकारिक गीत जारी किया गया। यह एक ऐसी धुन है जो युवा कैथलिकों की पूरी पीढ़ी के मन में गूंजेगी। अगले विश्व युवा दिवस के आधिकारिक गीत को कार्यक्रम के ठीक एक साल पहले जारी किया गया। यह गीत कैथलिक युवाओं के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिलन समारोह के लिए माहौल तैयार करेगा, जो 3 से 8 अगस्त 2027 को सियोल में होगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: चिरिदोर अमृत को कन्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को

0: के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरांत अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह की पुनः शुरुआत की। उन्होंने वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजा घर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। इस धर्म शिक्षा माला में हम साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर अपना चिंतन जारी रखेंगे। आज हम धर्म विधि दैनिक प्रार्थना के कलिसियाई आयाम पर विचार करेंगे। संत पापा लियो ने कहा, जैसे कि प्रेरित संत पौलुस हमें सलाह देते हैं, यह पवित्र आत्मा है जो हमें प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं। पेंतेकोस्त के दिन से पवित्र आत्मा कलिसिया में निवास करते हैं, हर किसी को उसके कार्य के लिए प्रेरित करते हैं और विशेषकर प्रार्थना करने के लिए। यीशु के पुनरुत्थान उपरांत यरूशलेम में जन्मे प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय में हम पवित्र आत्मा में जीवन को पाते हैं जो पुनर्जीवित यीशु द्वारा प्राप्त होता है। तब से लेकर कलिसिया पास्का रहस्य की यादगारी मनाने हेतु एक साथ आने में कभी नहीं चूकी है, जहां हम उन बातों को पढ़ते हैं जो पूरे धर्म ग्रंथ में उनके संबंध में लिखे गए थे। हम यूखरिस्त की धर्म विधि में उनके पुनरुत्थान और मृत्यु के उपरांत विजय की यादगारी मनाते हैं और इसके साथ ही हम ईश्वर को उनके अकथनीय उपहार के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु ख्रिस्त में उनकी महिमा के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम। संत पापा ने कहा, हमारे समय में जहां हम कुशलता के प्रभाव और भौतिकता की मानसिकता को पाते हैं, प्रार्थना हमारे लिए निरर्थक और तुच्छ जान पड़ती है। एक दुनिया में जहां विज्ञान और तकनीकी सारी चीजों का उत्तर देती है, प्रार्थना हमारे लिए एक तरह से पलायनवाद का स्वरूप लगता है। उससे भी बढ़कर बहुत से ख्रिस्तीय परिवारों में परंपरा से चली आ रही प्रार्थना को हम अब नहीं पाते हैं, जबकि बहुत से लोग इसे एक तकनीकी के रूप में देखने के भ्रम में पड़ जाते हैं, जो अपने में एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति जान पड़ती है और जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत रूप में कुशल मंगल रहने तक सीमित हो। प्रार्थना यद्यपि मानवता के एक मूलभूत आयाम स्वरूप हमसे इस बात की मांग करती है कि हम इसकी सच्ची प्रभावकारिता की पुनः खोज करें। संत पापा लियो ने कहा कि धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम ने इसकी आवश्यकता को गंभीरता से लिया है। यह संत पापा पॉल छठवें के लिए एक बृहद खुशी का कारण था, जो इस प्रथम दस्तावेज जिसे वैटिकन द्वितीय महासभा ने स्वीकृति दी घोषणा करते हुए कहते हैं,
2: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione.
1: ईश्वर सर्वप्रथम आते हैं, प्रार्थना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। धर्म विधि हमारे लिए दिव्य जीवन का मुख्य स्रोत है जो हमें दिया गया है। वह हमारी आध्यात्मिकता की प्रथम पाठशाला है। वास्तव में धर्म सिद्धांत में शब्दावली प्रार्थना, हमारे लिए एक पूरी धर्म विधि की ओर इंगित कराती है। यह दृष्टिकोण हमारे लिए निर्णायक है, क्योंकि यह धर्म विधि में परिवर्तन को दिशा निर्देशित करती है, जिसके फलस्वरूप विश्वासियों की सक्रिय सहभागिता अपने में मुख्य आधार बनती है। धर्म विधि सर्वप्रथम ईश्वर से मिलन स्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां हम ईश्वर की पहल को पाते हैं, जो अपने पुत्र में मानवता के करीब आते हैं। शब्द ने शरीर धारण किया, जो पवित्र आत्मा से अभियंजित हुए, जिसके प्रत्युत्तर में हम कहते हैं ख्रीस्त के द्वारा, ख्रीस्त से और ख्रीस्त में, जो पवित्र आत्मा से संयुक्त हैं। कहने का अर्थ है, हम यीशु ख्रीस्त की प्रार्थना के लिए उनके प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जो अपने शरीर से अपने पिता को संबोधित करते हैं। यही कारण है संत पापा पॉल छाटवे ने धर्म विधि दैनिक प्रार्थनाओं की तीव्र चाह रखी, जो कलीसिया के लोगों के लिए दैनिक प्रार्थना है, जो यूखरिस्ट से अलग नहीं है। यह अत्यधिक गहरी, सजीव, सभी ख्रिस्तीय प्रार्थना को निर्देशित और उच्चरित करती तथा ईश प्रजा के आध्यात्मिक जीवन को प्रभावकारी ढंग से पोषित करती है। संत पापा लियो ने कहा, इस चाह की प्रभावकारिता इस बात की मांग करती है कि धर्म विधि की प्रार्थनाओं को बपतिस्मा प्राप्त लोगों और समुदायों को पूर्ण रूपेण आलिंगन करते हुए जीने की आवश्यकता है। बहुत से लोग जो प्रार्थना करने हेतु सीखने की चाह रखते हैं, विशेषकर नव दीक्षार्थीगण, यह ख्रीस्तीय प्रार्थना उनके लिए मार्ग और पाठशाला हो सकता है।
2: Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo.
1: Har saptah aur har din Eucharist aur Kalisya ki dainik prarthana Kalisya ke jivan ki saansein banti hain, jise pavitra atma apne jivan ke dwara हमें प्रदान करते हैं। इस प्रार्थना में ख्रीस्त सारी मानव जाति के समुदाय को अपने संग संयुक्त करते हैं। वे उन्हें अपने दिव्य महिमा के भजन में सम्मिलित करते हैं। इस भांति दिन ब दिन हम उनके पास का रहस्य की एकता में संयुक्त होते जाते और उनके अनुरूप बनते हैं। संत अगुस्टिन हमारे लिए इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं कि जब हम करुणा की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, तो हम पुत्र को उनसे अलग नहीं करते हैं, और जब पुत्र प्रार्थना करते हैं तो वे अपने को शीर्ष से अलग नहीं करते हैं, और यह एक मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो ईश्वर के पुत्र हैं, दोनों हमारे लिए और हम में प्रार्थना करते हैं तथा जिनके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। वे पुरोहित के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वे शीर्ष के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर के रूप में हम उनसे प्रार्थना करते हैं। आइए तब हम उनमें अपने शब्दों को पहचाने और उनके शब्दों को अपने में। संत पापा लियो चौदवे ने कहा कि धर्म विधि की दैनिक प्रार्थना जो यूखरिस्त से संयुक्त उसकी ज्योति को दीर्घ बनाती है, हमारे दैनिक जीवन के समय को पवित्र करती है। सुबह में जब हम अपने दिन की शुरुआत विश्वास और कृतज्ञता में करते हैं, दोपहर में जब हम अपनी मेहनत में विश्वासी बने रहने की शक्ति की कामना करते हैं, संध्या के समय जब एक बार हमारे कार्य समाप्त हो जाते, संध्या वंदना सूर्यास्त के संग आगे बढ़ती है, रात में हम ईश्वर की शांति में अपने को सौंपते हुए विश्राम के लिए जाते हैं, हर घड़ी हमारे लिए आशा का एक कार्य है। पृथ्वी पर हमारी यात्रा के दौरान हम इस बात का ध्यान रखें कि हम पूरी कलीसिया के संग ईश्वर की महिमा में आने की प्रतीक्षा करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो चौदवे ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने मोजाम्बिक के शाईशाई के प्रेरितिक प्रशासक मोनसिन्योर चिमोइयो को भेजे एक टेलीग्राम में 3 अगस्त को शाईशाई धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष सेवानिवृत्त कार्डिनल डोम जूलियो लांगा की 98 साल की उम्र में निधन हो जाने पर अपनी आध्यात्मिक सहानुभूति जताई, जिन्होंने सरलता, जोश और लगन के साथ मुश्किलों से निराश हुए बिना उन्हें सौंपी गई झुंड के लिए खुद को समर्पित कर दिया। तार संदेश में संत पापा ने लिखा, मेरी आध्यात्मिक एकता और संवेदनाएं मोजाम्बिक के धर्माध्यक्ष इस प्यारे भाई के परिवार उस धर्म प्रांत के साथ हैं जहां उन्होंने पूरी लगन से सेवा की और पूरे देश के साथ है जो ऐसे शानदार पुरोहित के जाने का दुख मना रहा है। यीशु जो मालिक और प्रभु हैं के प्रति वफादार रहते हुए उन्होंने उनसे आत्माओं की देखभाल में करीबी की कला सीखी। खुद को सादगी, जोश और लगन के साथ उन्हें सौंपे गए झुंड के लिए समर्पित किया, मुश्किलों से निराश हुए बिना बल्कि उनसे ही उन जगहों को पहचाना जो खुशखबरी के लिए प्यासी थी। खासकर जब सभी मोजाम्बिक वासियों के बीच भाईचारे के भविष्य के लिए शांति और मेल मिलाप की खुशखबरी का प्रचार करना जरूरी हो गया। उधर वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की है कि संत पापा लियो 14वें 6 से 17 नवंबर तक उरुग्वाय, अर्जेंटीना और पेरू की प्रेरितिक यात्रा पर जाएंगे। संत पापा 6 से 8 नवंबर तक मोंटेवीडियो, पायसांदू और फ्लोरिडा, 8 से 11 नवंबर तक बोइनस आयरस, कोर्डोबा और लुजान, और 11 से 17 नवंबर तक लीमा, चिकलायो, कुस्को और पुकालपा जाएंगे। उरुग्वाय, जहां कैथोलिक आबादी सिर्फ 36% है, पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे कम कैथोलिक आबादी वाला देश है। वहीं अर्जेंटीना संत पापा फ्रांसिस का गृह देश था। हालांकि स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस, जो बोइनस आयरस से थे, अपने 12 साल के परमाध्यक्षीय काल के दौरान वहां नहीं जा पाए थे। अंत में, पेरू एक ऐसा देश है जिसे संत पापा लियो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे पहली बार 1980 के दशक में एक मिशनरी के तौर पर वहां पहुंचे थे, बाद में वहां धर्माध्यक्ष के तौर पर सेवा की और नागरिकता हासिल की। लैटिन अमेरिका की यह यात्रा, जिसमें संत पापा 11 दिनों में 10 शहरों का दौरा करेंगे, उनकी 6ठी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा होगी। उधर संत पापा लियो 14वें ने कोलंबस के शूर वीरों को बढ़ावा दिया कि वे पुल बनाकर और बंटवारे वाली दुनिया में मेल मिलाप को बढ़ावा देकर सामंजस्य के पैगंबर बने। संत पापा ने यह अपील 4 अगस्त को कोलोराडो के डेनवर में हो रहे ऑर्डर के 144वें सम्मेलन के प्रतिभागियों को दिए एक वीडियो संदेश में की। सम्मेलन में उपस्थित और ऑनलाइन शामिल होने वालों का अभिवादन करते हुए संत पापा लियो 14वें ने सभा की थीम एक में हम एक हैं और एकता एवं दान के गुणों पर बात की, जो कोलंबस के शूरवीरों के 2 बुनियादी सिद्धांत हैं। अंतिम ब्यारी में यीशु की प्रार्थना को याद करते हुए कि उनके चेले सब एक हो जाएं, संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि एकता विश्वासियों की हर पीढ़ी को दिया गया एक तोहफा है। एकता बनाए रखना अक्सर आसान नहीं होता और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसे ईमानदारी और विनम्र बातचीत के जरिए सक्रिय बनाना होगा। इसलिए संत पापा लियो ने शूरवीरों को प्रोत्साहित किया कि वे ख्रिस्त द्वारा चाही गई एकता की गवाही दें, जो उनके परिवारों और पल्लियों में शुरू होकर उन बड़े समुदायों तक फैले जहां वे रहते हैं और सेवा करते हैं। दान की बात करते हुए संत पापा ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए किए गए काम खुद एकता का रास्ता बन सकते हैं। जब हम जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अक्सर देने वालों और लेने वालों के बीच, साथ ही अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए मिलकर काम करने वालों के बीच एक खास मेलजोल बनता है। इस तरह दान न सिर्फ इंसानी दुख का जवाब बन जाता है,
बल्कि भाईचारा बढ़ाने और क्रिश्चिय जीवन के दिल में मौजूद मेल जोल को मजबूत करने का एक ताकतवर जरिया भी बन जाता है। संत पापा ने कहा, अपनी तरफ से मैं कम किस्मत वाले लोगों के लिए आपके ऑर्डर की लगातार दरिया दिली के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे भरोसा है कि आपकी कोशिशें आने वाले कई सालों तक फल देती रहेंगी। उधर कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूस के रात भर के हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और 51 घायल हो गए हैं। स्थानीय समय अनुसार आधी रात के तुरंत बाद 7 अलग अलग इलाकों में लगभग 10 विस्फोट सुने गए, जिससे गोदामों, रसद बुनियादी ढांचों और आवासीय भवनों में बड़े पैमाने पर आग लग गई। एक इमारत के मलबे से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया और कई इलाकों में बचाव अभियान अभी भी जारी है। ओडेसा में 3 जहाजों को क्षति हुई, जबकि रूस के तुला शहर में यूक्रेन के एक हमले में एक ऊंचे वाइल्डबेरी गोदाम को निशाना बनाया गया। कल रात मास्को ने जापोरेजिया क्षेत्र बाल अस्पताल पर हमला किया, जहां खुशकिस्मती से मरीज और स्टाफ पहले से ही सुरक्षित स्थान पर भाग चुके थे और किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। उधर हाल के महीनों में लेबनान में बच्चे देश के जटिल संकटों का खमियाजा भुगत रहे हैं। सहायता एजेंसियों का कहना है कि लेबनान में बच्चे देश में एक साथ आने वाले संकटों का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं। उन्हें बढ़ती मौतों, बड़े पैमाने पर बेघर होने, खाने की गंभीर कमी और गहरे मानसिक सदमे का सामना करना पड़ रहा है। 7,70,000 से ज्यादा बच्चे बार बार हिंसा, नुकसान और अस्थिरता के संपर्क में आने के बाद बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं और कई बच्चे बिना फटे बम के खतरे के कारण घर नहीं लौट पा रहे हैं। लेबनान आधुनिक इतिहास की सबसे बुरी आर्थिक गिरावट से गुजर रहा है और उनके पास स्वास्थ्य देखभाल, बिजली और शिक्षा तक सीमित पहुँच है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरांत अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह की पुनः शुरुआत की। उन्होंने वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजा घर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione conciliare sulla liturgia sacrosanctum concilium.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। इस धर्म शिक्षा माला में हम साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम पर अपना चिंतन जारी रखेंगे। आज हम धर्म विधि दैनिक प्रार्थना के कलिसियाई आयाम पर विचार करेंगे। संत पापा लियो ने कहा, जैसे कि प्रेरित संत पौलुस हमें सलाह देते हैं, यह पवित्र आत्मा है जो हमें प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं। पेंतेकोस्त के दिन से पवित्र आत्मा कलिसिया में निवास करते हैं, हर किसी को उसके कार्य के लिए प्रेरित करते हैं और विशेषकर प्रार्थना करने के लिए। यीशु के पुनरुत्थान उपरांत यरूशलेम में जन्मे प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय में हम पवित्र आत्मा में जीवन को पाते हैं जो पुनर्जीवित यीशु द्वारा प्राप्त होता है। तब से लेकर कलिसिया पास का रहस्य की यादगारी मनाने हेतु एक साथ आने में कभी नहीं चूकी है, जहां हम उन बातों को पढ़ते हैं जो पूरे धर्म ग्रंथ में उनके संबंध में लिखे गए थे। हम यूखरिस्त की धर्म विधि में उनके पुनरुत्थान और मृत्यु के उपरांत विजय की यादगारी मनाते हैं और इसके साथ ही हम ईश्वर को उनके अकथनीय उपहार के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु ख्रिस्त में उनकी महिमा के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम। संत पापा ने कहा, हमारे समय में जहां हम कुशलता के प्रभाव और भौतिकता की मानसिकता को पाते हैं, प्रार्थना हमारे लिए निरर्थक और तुच्छ जान पड़ती है। एक दुनिया में जहां विज्ञान और तकनीकी सारी चीजों का उत्तर देती है, प्रार्थना हमारे लिए एक तरह से पलायनवाद का स्वरूप लगता है। उससे भी बढ़कर बहुत से ख्रिस्तीय परिवारों में परंपरा से चली आ रही प्रार्थना को हम अब नहीं पाते हैं, जबकि बहुत से लोग इसे एक तकनीकी के रूप में देखने के भ्रम में पड़ जाते हैं, जो अपने में एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति जान पड़ती है और जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत रूप में कुशल मंगल रहने तक सीमित हो। प्रार्थना यद्यपि मानवता के एक मूलभूत आयाम स्वरूप हमसे इस बात की मांग करती है कि हम इसकी सच्ची प्रभावकारिता की पुनः खोज करें। संत पापा लियो ने कहा कि धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम ने इसकी आवश्यकता को गंभीरता से लिया है। यह संत पापा पॉल छठवें के लिए एक बृहद खुशी का कारण था, जो इस प्रथम दस्तावेज जिसे वैटिकन द्वितीय महासभा ने स्वीकृति दी घोषणा करते हुए कहते हैं,
2: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione.
1: ईश्वर सर्वप्रथम आते हैं, प्रार्थना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। धर्म विधि हमारे लिए दिव्य जीवन का मुख्य स्रोत है जो हमें दिया गया है। वह हमारी आध्यात्मिकता की प्रथम पाठशाला है। वास्तव में धर्म सिद्धांत में शब्दावली प्रार्थना, हमारे लिए एक पूरी धर्म विधि की ओर इंगित कराती है। यह दृष्टिकोण हमारे लिए निर्णायक है, क्योंकि यह धर्म विधि में परिवर्तन को दिशा निर्देशित करती है, जिसके फलस्वरूप विश्वासियों की सक्रिय सहभागिता अपने में मुख्य आधार बनती है। धर्म विधि सर्वप्रथम ईश्वर से मिलन स्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां हम ईश्वर की पहल को पाते हैं, जो अपने पुत्र में मानवता के करीब आते हैं। शब्द ने शरीर धारण किया, जो पवित्र आत्मा से अभियंजित हुए, जिसके प्रत्युत्तर में हम कहते हैं ख्रीस्त के द्वारा, ख्रीस्त से और ख्रीस्त में, जो पवित्र आत्मा से संयुक्त हैं। कहने का अर्थ है, हम यीशु ख्रीस्त की प्रार्थना के लिए उनके प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जो अपने शरीर से अपने पिता को संबोधित करते हैं। यही कारण है संत पापा पॉल छाठवें ने धर्म विधि दैनिक प्रार्थनाओं की तीव्र चाह रखी, जो कलिस्य के लोगों के लिए दैनिक प्रार्थना है, जो यूखरिस्ट से अलग नहीं है। यह अत्यधिक गहरी, सजीव, सभी ख्रिस्तीय प्रार्थना को निर्देशित और उच्चरित करती तथा ईश प्रजा के आध्यात्मिक जीवन को प्रभावकारी ढंग से पोषित करती है। संत पापा लियो ने कहा, इस चाह की प्रभावकारिता इस बात की मांग करती है कि धर्म विधि की प्रार्थनाओं को बपतिस्मा प्राप्त लोगों और समुदायों को पूर्ण रूपेण आलिंगन करते हुए जीने की आवश्यकता है। बहुत से लोग जो प्रार्थना करने हेतु सीखने की चाह रखते हैं, विशेषकर नव दीक्षार्थीगण, यह ख्रीस्तीय प्रार्थना उनके लिए मार्ग और पाठशाला हो सकता है।
2: Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo.
1: Har saptah aur har din Eucharist aur Kalisya ki dainik prarthana Kalisya ke jivan ki saansein banti hain, jise pavitra atma apne jivan ke dwara हमें प्रदान करते हैं। इस प्रार्थना में ख्रीस्त सारी मानव जाति के समुदाय को अपने संग संयुक्त करते हैं। वे उन्हें अपने दिव्य महिमा के भजन में सम्मिलित करते हैं। इस भांति दिन ब दिन हम उनके पास का रहस्य की एकता में संयुक्त होते जाते और उनके अनुरूप बनते हैं। संत अगुस्टिन हमारे लिए इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं कि जब हम करुणा की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, तो हम पुत्र को उनसे अलग नहीं करते हैं, और जब पुत्र प्रार्थना करते हैं तो वे अपने को शीर्ष से अलग नहीं करते हैं, और यह एक मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो ईश्वर के पुत्र हैं, दोनों हमारे लिए और हम में प्रार्थना करते हैं तथा जिनके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। वे पुरोहित के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वे शीर्ष के रूप में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर के रूप में हम उनसे प्रार्थना करते हैं। आइए तब हम उनमें अपने शब्दों को पहचाने और उनके शब्दों को अपने में। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि धर्म विधि की दैनिक प्रार्थना जो यूखरिस्त से संयुक्त उसकी ज्योति को दीर्घ बनाती है, हमारे दैनिक जीवन के समय को पवित्र करती है। सुबह में जब हम अपने दिन की शुरुआत विश्वास और कृतज्ञता में करते हैं, दोपहर में जब हम अपनी मेहनत में विश्वासी बने रहने की शक्ति की कामना करते हैं, संध्या के समय जब एक बार हमारे कार्य समाप्त हो जाते, संध्या वंदना सूर्यास्त के संग आगे बढ़ती है, रात में हम ईश्वर की शांति में अपने को सौंपते हुए विश्राम के लिए जाते हैं, हर घड़ी हमारे लिए आशा का एक कार्य है। पृथ्वी पर हमारी यात्रा के दौरान हम इस बात का ध्यान रखें कि हम पूरी कलिस्य के संग ईश्वर की महिमा में आने की प्रतीक्षा करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो चौदहवें ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने मोजाम्बिक के शाईशाई के प्रेरितिक प्रशासक मोनसिन्योर चिमोइयो को भेजे एक टेलीग्राम में 3 अगस्त को शाईशाई धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष सेवानिवृत्त कार्डिनल डोम जूलियो लांगा की 98 साल की उम्र में निधन हो जाने पर अपनी आध्यात्मिक सहानुभूति जताई, जिन्होंने सरलता, जोश और लगन के साथ मुश्किलों से निराश हुए बिना उन्हें सौंपी गई झुंड के लिए खुद को समर्पित कर दिया। तार संदेश में संत पापा ने लिखा, मेरी आध्यात्मिक एकता और संवेदनाएं मोजाम्बिक के धर्माध्यक्ष इस प्यारे भाई के परिवार उस धर्म प्रांत के साथ हैं जहां उन्होंने पूरी लगन से सेवा की और पूरे देश के साथ है जो ऐसे शानदार पुरोहित के जाने का दुख मना रहा है। यीशु जो मालिक और प्रभु हैं के प्रति वफादार रहते हुए उन्होंने उनसे आत्माओं की देखभाल में करीबी की कला सीखी। खुद को सादगी, जोश और लगन के साथ उन्हें सौंपे गए झुंड के लिए समर्पित किया। मुश्किलों से निराश हुए बिना बल्कि उनसे ही उन जगहों को पहचाना जो खुशखबरी के लिए प्यासी थी, खासकर जब सभी मोजाम्बिक वासियों के बीच भाईचारे के भविष्य के लिए शांति और मेल मिलाप की खुशखबरी का प्रचार करना जरूरी हो गया। उधर वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की है कि संत पापा लियो 14वें 6 से 17 नवंबर तक उरुग्वाय, अर्जेंटीना और पेरू की प्रेरितिक यात्रा पर जाएंगे। संत पापा 6 से 8 नवंबर तक मोंटेवीडियो, पायसांदू और फ्लोरिडा, 8 से 11 नवंबर तक बोइनस आयरस, कोर्डोबा और लुजान, और 11 से 17 नवंबर तक लीमा, चिकलायो, कुस्को और पुकालपा जाएंगे। उरुग्वाय, जहां कैथोलिक आबादी सिर्फ 36% है, पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे कम कैथोलिक आबादी वाला देश है। वहीं अर्जेंटीना संत पापा फ्रांसिस का गृह देश था। हालांकि स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस, जो बोइनस आयरस से थे, अपने 12 साल के परमाध्यक्षीय काल के दौरान वहां नहीं जा पाए थे। अंत में, पेरू एक ऐसा देश है जिसे संत पापा लियो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे पहली बार 1980 के दशक में एक मिशनरी के तौर पर वहां पहुंचे थे, बाद में वहां धर्माध्यक्ष के तौर पर सेवा की और नागरिकता हासिल की। लैटिन अमेरिका की यह यात्रा, जिसमें संत पापा 11 दिनों में 10 शहरों का दौरा करेंगे, उनकी 6ठी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा होगी। उधर संत पापा लियो 14वें ने कोलंबस के शूरवीरों को बढ़ावा दिया कि वे पुल बनाकर और बंटवारे वाली दुनिया में मेल मिलाप को बढ़ावा देकर सामंजस्य के पैगंबर बने। संत पापा ने यह अपील 4 अगस्त को कोलोराडो के डेनवर में हो रहे ऑर्डर के 144वें सम्मेलन के प्रतिभागियों को दिए एक वीडियो संदेश में की। सम्मेलन में उपस्थित और ऑनलाइन शामिल होने वालों का अभिवादन करते हुए संत पापा लियो 14वें ने सभा की थीम एक में हम एक हैं और एकता एवं दान के गुणों पर बात की, जो कोलंबस के शूरवीरों के 2 बुनियादी सिद्धांत हैं। अंतिम ब्यारी में यीशु की प्रार्थना को याद करते हुए कि उनके चेले सब एक हो जाएं, संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि एकता विश्वासियों की हर पीढ़ी को दिया गया एक तोहफा है। एकता बनाए रखना अक्सर आसान नहीं होता और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसे ईमानदारी और विनम्र बातचीत के जरिए सक्रिय बनाना होगा। इसलिए संत पापा लियो ने शूरवीरों को प्रोत्साहित किया कि वे ख्रिस्त द्वारा चाही गई एकता की गवाही दें, जो उनके परिवारों और पल्लियों में शुरू होकर उन बड़े समुदायों तक फैले जहां वे रहते हैं और सेवा करते हैं। दान की बात करते हुए संत पापा ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए किए गए काम खुद एकता का रास्ता बन सकते हैं। जब हम जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अक्सर देने वालों और लेने वालों के बीच, साथ ही अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए मिलकर काम करने वालों के बीच एक खास मेलजोल बनता है। इस तरह दान न सिर्फ इंसानी दुख का जवाब बन जाता है
बल्कि भाईचारा बढ़ाने और क्रिस्तीय जीवन के दिल में मौजूद मेल जोल को मजबूत करने का एक ताकतवर जरिया भी बन जाता है। संत पापा ने कहा, अपनी तरफ से मैं कम किस्मत वाले लोगों के लिए आपके ऑर्डर की लगातार दरिया दिली के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे भरोसा है कि आपकी कोशिशें आने वाले कई सालों तक फल देती रहेंगी। उधर कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूस के रात भर के हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और 51 घायल हो गए हैं। स्थानीय समय अनुसार आधी रात के तुरंत बाद 7 अलग अलग इलाकों में लगभग 10 विस्फोट सुने गए, जिससे गोदामों, रसद बुनियादी ढांचों और आवासीय भवनों में बड़े पैमाने पर आग लग गई। एक इमारत के मलबे से 2 लोगों को जिंदा निकाला गया और कई इलाकों में बचाव अभियान अभी भी जारी है। ओडेसा में 3 जहाजों को क्षति हुई, जबकि रूस के तुला शहर में यूक्रेन के एक हमले में एक ऊंचे वाइल्डबेरी गोदाम को निशाना बनाया गया। कल रात मास्को ने जापोरेजिया क्षेत्र बाल अस्पताल पर हमला किया, जहां खुशकिस्मती से मरीज और स्टाफ पहले से ही सुरक्षित स्थान पर भाग चुके थे और किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। उधर हाल के महीनों में लेबनान में बच्चे देश के जटिल संकटों का खमियाजा भुगत रहे हैं। सहायता एजेंसियों का कहना है कि लेबनान में बच्चे देश में एक साथ आने वाले संकटों का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं। उन्हें बढ़ती मौतों, बड़े पैमाने पर बेघर होने, खाने की गंभीर कमी और गहरे मानसिक सदमे का सामना करना पड़ रहा है। 7,70,000 से ज्यादा बच्चे बार बार हिंसा, नुकसान और अस्थिरता के संपर्क में आने के बाद बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं और कई बच्चे बिना फटे बम के खतरे के कारण घर नहीं लौट पा रहे हैं। लेबनान आधुनिक इतिहास की सबसे बुरी आर्थिक गिरावट से गुजर रहा है और उनके पास स्वास्थ्य देखभाल, बिजली और शिक्षा तक सीमित पहुँच है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।